रास्ता देखे पर रास्ता खाली दिखे, कोई सुनिया लेके नहीं आया, ते अखां विच जल भर आया, अथरू किरण लग पे कि हाली भी कोई सुनिया नहीं आया।

लिख के भेज दिता, पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखन बैठे, कहन लगे हुण की लिखा, तड़फता लिख।

लिखे हैं, पर एदा भी कोई जवाब नहीं आया। हुण तां नींदर नहीं पैंदी, खाना पीना भुल गया, मन

नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा, क्यों को कढे गहना। नानक बिनवे सो किछ पाइए, पुरब लिखे।

সদর না দাওকে তুলি আমতন না ভুল মারা পজিত্রে দীক্ষিত আসানু মিত শরীর লে আয়ে মেরা ভাই নহিঁ তায়ে থে আমর দীক্ষণ হর দিন জোর করতা হে রাম इंसान के जीवन का मुद्दा कर्म बंद धन गुरु अर्जुन देव पातशाह सुनाते हैं कुदरत चीज न जानिए वड़ा वे प्रवाह कर बंदे तू बंदगी जिथे घट में बंदगी का स्वरूप की इंसान का जीवन बंदगी कहते कि कारोबार छे कामकार बंद सारा दिन माड़ा लेके वाहगुरू का जाप भी करते बंदगी गुरु का सिख धर्म की किरत करता है यह भी बंदगी यह भी सिमरन धर्म की किरत करनी यह भी बंदगी रहे बाबा जी सत्यन जी महाराज मानसा वाले बाबा जी कई बार अपनी पवित्र पावन सुनाते ते बचन करते सन वेला आदमी तो धरती से भाई जो निकम्मा आदमी है वो धरती भी प्रमाण है कर्म कर्म कम कर्म इंसान का कर्म हर एक माने पूछा उदम करेंगे जीव तो उत्तम करना इंसान का फर्ज उस उत्तम को फल लेना मालिक भी बस जरा कुटुंब ही नहीं करना और कुछ नहीं जो इंसान हिम्मत करते हैं उन्होंने मदद खुदा रब है खुद भी इंसान की मदद वो वाहगुरु ने उदम करे दे किसान कम करता है बैठा ही कह दे आपे बीज उपवेगा आपे फसल घर आ जाए गलां मार नहीं किसान का फर्ज है धरती सुवार के वक्तर वेले धरती में बीज पा कितना उद्यम जरा है एक इंसान फिर धरती जो बीज को बाहर करना है किसान का काम नहीं वाहगुरु की बख बीज ही नहीं पाया धरती में सुवारे तो किसान भुखा मर क्या कितनी जमीन उससे बोल कितना उद्यम किसान रहता बीज पा लेना बीज न उगाना वाहगुरु का फर्ज और बख्श इसे सूझी फकीर नहीं मिली

फिर धोती फटी सिलती दुपटी, इसको धोती तेरा परो इस फटी हुई धोती फटी सिलती दुपटी, नहीं पाए पनिया ये आहे निशान। भगवान जी उन्हें पैरा दिखती कोई ये निशानी

स्वर्ण जिथे सुदामा फिरत है जाके की कीता दूरों देश अयोध्या की जी दूरों देश दंडौत कर रनौता कर रनौत जान दे एक तो होते ना अपना मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत होते सारा श्री दम्मा पर परमेश्वर ने दंडौत बंधन अनुभव आत्मारे कितने कितने उसे प्रेम यानी सात दिन जो गुरु हो गया थे दंडौत कर सारा श्री पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमन साथ भगवान कृष्ण जी सुदामे भी अगे जाके पहला दंडौत की गुरु देख दंडौत करे भाई साहब जी लिखते हैं

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगां लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित दुआरे उबरे जिते लेहो ओबा। तू सारिया ते मेहर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र भन कर, सारिया का दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

शिमरस्त वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुन जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू ले जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये वचन अपने पले बनांगे।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी शोध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ।

ताती वावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर He has gifted me with the balm of Lord's name and I have enshrined love for Him within myself. The preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

संसार दा आना जाना तो बड़े है, पर इस आउन तो बाद जान दे समय नबेड़ा सच ते होना। सदा रहण वाले वाहिगुरु अकाल पुरख असी रोज पढ़ने, कूड राजा, कूड परजा, कूड सब संसार, क्योंकि रहना जो नहीं, जेड़ा अज है कल नहीं होगा, जो अज तो 100-200 वरे पहला सी ओदे बारे पढ़ते सुनते हैं, कदे यकीन आउंदा कदे नहीं आउंदा, और बहुत कुछ ऐसा भी है जिदे बारे लिखिया भी नहीं गया, असी कुछ सुनते भी नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते, बहुत कुछ संसार ते ऐसा ही होया जिदी कोई निशानी बाकी नहीं है, जिदी निशानी भी कोई नहीं, जिक्र भी कोई नहीं, उन्हूं सच कवें कहोगे। और होर चार दिनां नूं जिहड़ियां निशानियां साडे कोल पिछले इतिहास दीआं कायम ने, हो सकदा है ना रहण, आउण वाला युग जिस वेले असी गल्लां करीए कहण इह झूठ है, इह मन्नण विच नहीं आउंदा, जो कल सी अज झूठ हो गया, जो अज है कल झूठ हो जाएगा, ओदे बारे धन गुरु नानक कहिंदे ने कूड राजा, कूड परजा, कूड सब संसार, कूड मंडप, कूड माड़ी, कूड फैशन हार, कूड सोयना, कूड रूपा, कूड पहनन हार, कूड काया, कूड कपड़, कूड रूप अपार, कूड मियां, कूड बीबी, खप होए फार, कूड कूड़े नेह लगा, विसरिया करतार, गलत हो गया काम, कूड नाल मोह पा लिया, कूड नाल नेह पा लिया, जो रहण वाला सच सी ओदी संभाल ना कीती, ओनू चेते ना कीता, विसरिया करतार, महाराज सचेत कराउंदे ने किस नाल की चै दोस्ती, जो तुर गया ओदे नाल दोस्ती, कि जो रहना है, जो है मौजूद है, जिसने अगे भी रहना है, ओदे नाल प्यार, के जो तुर गया ओदे नाल प्यार, जो छड गया ओदे नाल प्यार, अज एक छड गया, और जो छड गया है ना, एक इशारा कुछ संकेत दे गया। एक महापुरुष ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदा हर बच्चा जो माता दे गर्भ तो जन्म लैंदा है, एक सूचना लैके पैदा हुंदा है कि मैं मरण वास्ते आया, वरे गंढा बीतदियां जांदियां ने, दिन बीतदे जांदे ने, बच्चा वड्डा हो रहा है, लेकिन कबीर जी कहिंदे ने दूजे पासों भी गिणदा, उधरों भी वेख लै, जननी जानत सुत वड्डा होता है, मां कहिंदी पुत्र वड्डा हो रहा है, पर कबीर दियां अखां होर पासों वेखदियां ने,

इतना को ना जाने जे दिन दिन औध घटत है, ए तो जिंदगी घट रही है। जितनी आयु दिखा के ले आया जेड़ी ए उमरा असी गिन रहे हैं वड्डे होण दी ओनी घट गई है, बाकी थोड़ी रह गई। मरना नेड़े आउंदा जा रहा, ते जिस दिन मरना आ ही जांदा है ना, ओ चाहे बाल अवस्था विच आ जावे, क्योंकि महाराज ने स्पष्ट कह दिता है इस संबंध कोई बंदिश नहीं है, न बारक न जोबन न बिरधी कछ बंद, ओ बेरा न बूझी है जा आए परे जा पंद, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हू जम लै गई है रे। सानू पसंद हो सकता है, जवान चंगा लग सकता है, बच्चा चंगा लग सकता है, बुजुर्ग का सत्कार हो सकता है, साडियां अखां अपने अपने हिसाब नाल किसे नूं चंगा समझदियां ने किसे नूं माड़ा समझदियां, लेकिन जम नूं सारे ही चंगे लगदे जदों जिन्हों जो चंगा लगता लैके तुर पैंदा, सब हूं जम लै जाई है। ओ वड्डा हो रहा है, कबीर जी कहिंदे ने नहीं उधरों छोटा हो रहा, ते जिस दिन ओ छोटा हुंदा हुंदा पूरा हो जांदा है, ते साडे आम तौर ते कह दिंदे ने सवाल च कहिंदे पूरा हो गया, फलाना पूरा हो गया, मर गया नहीं कहिंदे, कहिंदे पूरा हो गया, भाव मौत दा समा जो उन्हूं मिलिया सी, मौत तक दा समा, जीवन तो मौत तक दा समा, उहदा समा पूरा हो गया। आना के पूरा होना तो ता सी जे पूरे वाहिगुरू अकाल पुरख दे नाल रचिया हुंदा, जिंदगी सफलतावां नाल भरी हुंदी, जिंदगी आनंद नाल भरी हुंदी, जीवन नाम नाल भरपूर हुंदा, भगती ते नेकी नाल सेवा नाल भरपूर हुंदा, ते कहिए ए बंदा पूर्ण होके गया, पूर्ण मनुखां वांगू जीवे, पर नहीं, बहुत घट ऐसे हुंदे ने जिहड़े वाकई सफलता वाला जीवन जीउंदे होए जांदे ने, नहीं तां अधूरा जीवन बतीत करके ही बहुत तुर जांदे, और ए पूरा जीवन कोई कई बार जवानी तो पहला पहला ही पूर्णताइयां नूं प्राप्त हो जांदे ने, ते कई जिहड़े ने सैवरियां दी उमरां पा के भी अधूरे दे अधूरे ही रह जांदे ने, क्योंकि कीता ही कुछ नहीं, पर नहीं असीं समझने जिंदगी दे दिन पूरे हो गए कहिंदे आ बंदा पूरा हो गया। हर वो बाल जिहड़ा जन्म लैंदा है मौत दा मुंह पूरा करन वास्ते, मौत दा समा पूरा करन वास्ते जन्म लैके आया, ते समा ओ मौत दा पूरा कर रहे हो जाएगा, ते जिस दिन मौत दा समा पूरा करके तुर जांदा है, एक गल है संकेत दे जांदा है, एक गल कह जांदा है, भावे ऐलान ना साडे कन्नां च पैंदा होवे, लेकिन एक गल साडी समझ आ जावे, ओ कहिंदा मैं चलिया तुसी तैयार रहना, एक चाले एक चाल सहे सब अपनी वार, वारी लगी हुई, और ये वारी इस तरह दी है संसार दी व्योंत विच भी कई बारी वारियां लगदियां ने, लाइन लग जांदी, क्यों लग जांदी, पर उत्थे बंदा एक पासे सिर करके देखदा कि 70 बंदे खड़े ने कि 80 खड़े ने, इन्हां तों बाद मेरा नंबर है, उत्थे वारी दी गिणती दा पता लग जांदा, लेकिन जिहड़ा ए महाराज जी पातशाह ने कहता दिता जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, पर वारी दा पता कोई नहीं लगदा, ए वारी दा नंबर मालिक ने अपने हथ रखे, किस तो बाद किसने जाना, किन्नियां तो बाद किन्नवा नंबर साडा ए नहीं पता है, वारी लगी हुई लेकिन इस वारी दी गिनती दा पता मालिक नूं आप नूं, पर ए पक्की गल है कि वारी बनी हुई है, उस वारी अनुसार जाना है, कि जिन्हीं चलन जाने आ से क्यों करे विथार, जिन्हां नूं पता है कि जाना है ओ फिर संसार दे पसारे च अपने मन नूं नहीं पसार दे, संसार दे विस्तार विच अपने मन नूं खिलार नहीं खिंडा नहीं देंदे, बल्कि मन नूं तां प्रभु चरणां च जोड़दे ने, उन्हां दा अंत सच्चे वाहिगुरू अकाल पुरख नाल जुड़े होण करके उन्हां दा सच ते नबेड़ा हुंदा है, उन्हां नूं वाहिगुरू अकाल पुरख बख्श के अपने विच मिला लैंदा है, फिर उन्हां दा संसार ते फेरा पाउण दी होर लोड़ नहीं रहिंदी, आउणा जाणा मुक जांदा है, गुरु के होके गुरमुख होके उन्हां नूं वड्याईयां ते मान मिलदा है, रे रे दर कहे कहे ना को आओ बैठ आदर शुभ देव, ओ आ महली पावें तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा, ओ साचे रंग राते सच्चे वाहिगुरू अकाल पुरख दे रंग विच रते होए, सहज सहज जीवन बतीत करदे सहज नाल भरपूर होए होए सहज विच समाई करके उन्हां नूं सच्चा वाहिगुरू अकाल पुरख चंगा लगदा है, वाहिगुरू ओ चंगे लगदे ने, सच्चे नूं मन च वसा के शब्द विच रते होए अंत उन्हां दा फैसला उन्हां दी चंगी करनी करके चंगा हुंदा है। महाराज कहिंदे नानक नाम रते से सच समाणे, पौर ना भवजल फेरा, आओ किते उन्हां दी रीस करिए, जेड़े मुर्गे भवजल दे फेरे वास्ते नहीं बनाए गए, बल्कि जेड़े बनाए गए ने ते उन्हां ने जीवन बनाया, जीवन बना के जीवन नूं सच नाल जोड़िया, सच्चे नाल जोड़िया, उन्हां दा पौर ना भवजल फेरा, उन्हां दा आउणा जाणा मुक जांदा है, जीणा भी उन्हां दा है जाणा भी उन्हां दा है, आओ ऐसे लोकां दी प्रेरणा लैके जीवन नूं अखां खोल के वेखिए।
ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਜੀਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਰ ਪਾਈਏ, ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ।

पानी दा रंग लाल देखिया ते कहन लगे बेटा पानी अज पानी दा रंग लाल क्यों है ता जवाब दिता पिता जी तुसी इशनान कर रहे सी तुहाडा ध्यान लगा सी चौंकी दा पावा टूट गया ते मैं अपना पैर थले दे दिता कि मता आप जी दा ध्यान ना भंग हो जाए ते मेरे पैर दे विचों ए खून निकल रहा है जिस नाल पानी दा रंग लाल हो गया। तो गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न हुए कहन लगे बेटा पानी मंग तेनू की चाहिए क्या पिता जी आपदा दिता बहुत कुछ है उस अकाल पुरख दा दिता बहुत कुछ है किसी चीज की इच्छा नहीं महापुरुषां दे तीन बचन हुंदे ने तीसरी वारी क्या बेटा कुछ मंगो बड़े

कि ये घर की गद्दी घर विच रवे। तां गुरु साहिबां ने कहा ये चीज मिलता जाएगी पर ये वास्ते देना बहुत कुछ पवेगा, सारा सरबंस वारना पवेगा। अगर मंजूर है तां ये जोत ये गुरगद्दी घर विच रह सकती। क्या पिता जी जो मर्जी हो जाए मैं सब कुछ कुर्बान कर देंगे, पर सा संग की सेवा ये साडे परिवार दे कोल रवे। तां उस वक्त गुरु साहिबां ने कहा कि बेटा देख लो तत्तियां लोहां ते बहना पएगा, सिरां ते गर्म रेते पवाने पैणगे, किधरे सिर भी कटाना पएगा, किधरे बच्चे नीहां विच चनवाने पैणगे, किधरे उन्हां दीआं छातियां गोलियां तीरां दे नाल छलनी करवानियां पैणगियां, ता किधरे

जे तुहाडा हरमंदर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिनू ए पता लगे कि साडा हरमंदर कैद है, असी हरमंदर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरमंदर साहब नू आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखा ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपने जवाना दे नाल तुरे ने अमृतसर दे लागे। बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखा नू जान प्यारी नहीं, अपना हरमंदर प्यारा है। अपनिया जाना वारियां अते बाबा दीप सिंह दा जदू सिर तू सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता ते अपने हरमंदर नू आजाद कराया। क्यों के बाबा दीप सिंह जी जानदे ने ए गुरु रामदास दी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई है, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे ओ कुछ चिर तां खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हरमंदर नू बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है, पर ए तां गुरु दी नगरी है, जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करेगा।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी। जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सबको माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गए मान पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभु तेरी मैया आपको कछु न किन्हु मिलया। जित जित लावो तित